0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अन्ना विजय चौहान बाहर गाँव गया, उसका बहन इधर अकेला।
1: माँ मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी।
2: वतन से दूर वतन का एहसास,
3: आपके जज्बात का अक्कास,
2: सदाबहार नगमों की मिठास,
3: जो है हर लम्हा आपके पास।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: और इस हसीन इकरारे मोहब्बत के बाद शुरू होता है वादों, इरादों और कस्मों का रंगीन सिलसिला.
3: अक्सर ये इरादे नाकाबिले अमल होते हैं, ये कस्में नाकाबिले यकीन होती हैं, मगर फिर भी बड़े ही पुरकशिश, बड़े ही दिलकश होते हैं ये वादे.
2: शायर है हसरत जयपुरी और आवाज़ आशिक बनी है अभिजीत.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: और अब महफिल शम्मा है जनाब मनहन उदास के रूबरू, शायर हैं शेख आदम आबू वाला।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: वाकई मोहब्बत पागल बना देती है, ना अपना ख्याल रहता है ना दुनिया की परवाह। दिल धड़कता है तो महबूब का नाम लेकर, आंखें झपकती हैं तो सनम की सूरत बसाकर।
3: नदीम शान की दिलरुबा तर्ज पर गजल की खुशबू बिखेर रहे हैं कुमार सानू।

0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: तरसती निगाहों की यही तड़प तो मोहब्बत को और निखारती है। कभी ख्वाबों में मिलते हैं, कभी तसव्वुर में बातें करते हैं।
3: प्रेमी हर हाल में सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं,
2: क्योंकि प्यार ही उनकी जिंदगी है, प्यार ही उनकी सांसों का सहारा है।
3: अल्फाज नफीस आलम के हैं और अंदाज मोहम्मद अजीज का।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online.
2: चाबी दे दे वरना अंदर कर दूंगा।
3: हाय हाय हाय हाय, वो दिन कब आएगा?

पास में

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

सारे प्यार उसी तरह हम हैं ये बड़े नाजुक जैसे फूल हों छूना जरा धीरे से इन हसीनों को दिल भरिए शोला बदन है प्यारे ये झूठे सनम।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: इस तरफ प्यार की आग इस कदर तेज हो तो उस तरफ आँच पहुँचना लाजमी है।
4: इश्क जितना तपता है उतना ही चमकता है।
3: हकीकतों की दुनिया पर जमाने का इख्तियार सही, मगर ख्वाबों की जन्नत पर दुनिया की हुकूमत नहीं। इसी एहसास का बयान कर रही है सदाए नाज़नीन साधना सरगम।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अन्ना विजय चौहान बाहर गाँव गया, उसका बहन इधर अकेला।
1: माँ मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी।
2: वतन से दूर वतन का एहसास,
3: आपके जज्बात का अक्कास,
2: सदाबहार नगमों की मिठास,
3: जो है हर लम्हा आपके पास।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online.
2: औरत जात मर्द से झगड़ा हो

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: तरसती निगाहों की यही तड़प तो मोहब्बत को और निखारती है। कभी ख्वाबों में मिलते हैं, कभी तसव्वुर में बातें करते हैं।
3: प्रेमी हर हाल में सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं,
2: क्योंकि प्यार ही उनकी जिंदगी है, प्यार ही उनकी सांसों का सहारा है।
3: अल्फाज नफीस आलम के हैं और अंदाज मोहम्मद अजीज का।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास,
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।
3: धनी रे गा रे सा।
4: अरे सा तो ठीक से लगाओ।
3: सा सा सा सा सा सा सा
4: सा
3: सा।
4: हाँ, अब गाओ।
5: अरे ये गाएगा क्या, इसके पास बोल तो है नहीं, सिर्फ धुन है।
4: अच्छा तो बोल मैं देती हूँ, जरा धुन तो सुनाओ।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: यो कृष्णन अय्यर यम ये के इतने सारे नाम
3: तूने क्यों मुझे बचाया
2: बस अपना फर्ज निभाया
3: क्या तू कुछ भी कर जाता
2: कर जाती
3: नहीं कर जाता बोलो
2: अच्छा अच्छा कर जाता
3: मेरे लिए मर जाता
2: हाँ मर जाता
3: ओह माय गॉड यू आर इन लव
2: यू आर इन लव

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

Yazık. Bu ne?

पूर्व की जो गजल उसने थी निर्माण जिसे तो प्राप्त कर अपने तमाम ही बुजुर्गों बहनों भाइयों बेटों बेटियों बच्चों और तमाम ही सामीन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत और पति जैसे रद्द सलाम प्यार भरी नमस्कार जिनकी गहराइयों से खुश स्वीकार मैं वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कैसे हैं आपके हाल चाल? मेरे तो अल्लाह का बड़ा फजल करम है। अभी जो मैं प्रोग्राम करने आ रहा हूँ टेम्परेचर 9.8 का बारिश और ओलो का सिलसिला जारी था। लखनऊ मौसमियात पेशगोई के मुताबिक टेम्परेचर 11 से 12 जाएगा और दिन भर मौसम का अहवाल कुछ यही रहेगा। धूप और छाँव बारिश और ओलो का ये खेल जारी रहेगा। हमेशा की तरह आज वे रिवायत आगाज उसके नाम नामी से हो चुका है। जैसे लोग मुख्तलिफ नामी से पुकारते हैं कोई खुदाबंदी करीम कैसे पूजा करता है, कोई भगवान कैसे प्रार्थना करता है, कोई वाहे गुरु कैसे विश्वास करता है और कोई गॉड या लॉर्ड कैसे देखता है। उसे किसी नाम से किसी भी वक्त किसी भी भगवान किसी भी आम

तमाम सामीन और नाजरीन के नाम कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और इसके लिए तो करती है इजाफा करती है। आप सबकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम ये गीत

कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस तरह का राशि हुई और प्रोग्राम को मैं देर से शुरू कर पाया, लेकिन बहरहाल देर आया।

0: वो असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
1: दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
0: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने वाइट एवेन्यू पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: ये नहीं करते कांटे बाहियां कंगन गले के हार 22-24 कैरेट गोल्ड में तैयार
0: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
1: 30 बेटली हिल ब्रैडफोर्ड PD8 8NG4

डिजिटल क्वालिटी डेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर जिंदगी की यादगार दिन को यादगार करीब बनवाइए। आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए 07548419678 एशियन वेडिंग्स UK.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कामयाब।

0: वो असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
1: दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
0: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई।
2: जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एपे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: धीमे करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22-24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
2: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
1: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG 4 0174 4

लगता है। वे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का प्रेफर्ड मर्कज, जिनके लिबास

Dios, supongo.

ترجمة

साबुन

नहीं है कुरान को यही जारी रखने और कोशिश हमारी जितनी कामयाबी के शिकार होती है या नहीं आपको

in the middle of my living now. Afternoon, breakfast, this can be good. 14, 13 we can read, but maybe we put the block. After my start of the heat, finally, the deeper. Coming to the heat, up to the heat, and I was very sincere to remind you, we got by heat to start, we got to see. जय हाजरी के तुम्हारी बोझ में तशरीफ लाते हैं निजी अहमद साहब और उनकी नजर हम कर रहे हैं बे इंतहा खूबसूरत गीत चौपल पर इस दुआ के साथ कि आपकी और हमारी मोहब्बत यूं ही सलामत रहे आप और हम इसी तरह महसूस

और आइए दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं मिडिल्सब्रा, जहां मौजूद हैं वो कजन्स जिनके लिए सुमैरा बिटिया गीत पेश करना चाहती हैं ब्रैडफोर्ड 3 से चंद ही लम्हों बाद।

0: ब्रेडफोर्ड से हमारी बावची खाने की रानी प्यारी सी बिटिया सुमेरा ब्रेडफोर्ड 3 से अपनी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम ये खूबसूरत गीत कर रही हैं। अल्लाह ताला आप में और आपकी कजन्स में ये अंडरस्टैंडिंग यूं ही सलामत रखे।
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल?

0: Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
1: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD7 1HR, 01274 4888 77।
2: पिया मन भाई
3: जेवर बोझ पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
2: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95VR, 01274 491 442,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
5: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
5: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स,
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
9: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, हमारी ये नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर, यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इससे पहले कि हम आपको वेकफील्ड लेके चलें और वकार मियां का तोहफा उनके हवाले करें, और जो आज स्कॉटलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं, अहले खाना के हमराह मौजूद हैं और उनकी इजाज़त से हम अपने एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान को, जो बहुत ही सादा दिलकश शख्सियत के मालिक हैं, ओल्डहम से तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की जीनत व तौक़ीर बढ़ाते हैं, अयूब चौहान साहब से दो बातें हो जाएं और उसके बाद वक़ार साहब आपका तोहफ़ा आपके लिए लेकर हाजिर होंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आपकी मंजिल मकसूद स्कॉटलैंड में एडिनबरा तक खैर वाफियत के साथ पहुंचाए और खैर वाफियत से वापस लाए। हमारी ढेरों दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। तो आइए ज़रा अय्यूब भाई से बातें करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम सलाम रहमतबाज़ भाई, आप ठीक हैं?
9: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अय्यूब भाई, आप सुनाइए कैसे हैं?
10: मैं भी ठीक ठाक हूँ, बस आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। तो मेरी आवाज यकीनन क्लियर आती होगी?
9: बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है।
10: तो कुछ इशार सुनाता हूँ, तो गाना तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। फिल्म नैला का गाना है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है।
9: अरे वाह,
10: तड़पना हमें भी आता है, तड़पाना भी आता है।
9: बिल्कुल तड़पा के रख दिया यार आपने, गीत गुनगुना के।

0: खूबसूरत गीत है खुश आमदीद।
1: वैसे मेरे का पास पूरी बुक पड़ी है वो पाकिस्तानी गानों की, काफी सारे गाने।
0: अच्छा,
1: तो अभी मैं निकाल ही दिया, वैसे दिल कर रहा था तो दो लफ्ज आपको सुना दूं।
0: बहुत बहुत अच्छा, बहुत उम्दा।
1: तो शायर ये कहता है,
0: क्या कहता है,
1: जज्बों की मिठी नींद सदा तो नहीं दिया,
0: आहा।
1: फिर अपना आप हमने बुला तो नहीं दिया,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: जिंदा हो तुम भी तर के तलकात के बावजूद,
0: पर जिंदा हो तुम फिर भी तर के तालुकात के बावजूद। ये शेर दोबारा पढ़िए, जिंदा हो फिर
1: जिंदा हो तुम भी तर के तलकात के
0: तर के तालुकात के बावजूद,
1: हमने भी अपना आप जला तो नहीं दिया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: वो लौट कर जब आया तो कहने लगा हमें,
0: आहा,
1: आंखों में ख्वाब सजा तो नहीं दिया,
0: आंखों में ख्वाब सजा तो नहीं दिया। वाह वाह वाह वाह।
1: कुछ मंजिलें हैं और भी राह हयात में,
0: कुछ मंजिलें हैं और भी राह हयात में,
1: जीवन इस गली में लौटा तो नहीं दिया।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: अर्शद बुझे बुझे नजर आते हो आजकल,
0: आहा,
1: रोशन दिया वफा का जला, रोशन दिया वफा का बुझा तो नहीं दिया।
0: आए है ये मख्ता अरशद साहब का, दोबारा पढ़िए कि अरशद बुझे बुझे से,
1: अरशद बुझे बुझे नजर आते हो आजकल, रोशन दिया वफा का बुझा तो नहीं दिया।
0: बहुत खूबसूरत इंतखाब, वाह वाह वाह वाह।
1: अच्छा, एक और है
0: जी, अता कीजिए।
1: ये श्रेया
0: जी किस तरह है बाओ,
1: आज वो सालों के बाद उसका फोन आया और पूछा कैसे हो।
0: भाई मुबारक हो आपको बहुत बहुत अयूब भाई,
1: कुछ तो हो ना।
0: हाँ मुबारक हो, मुबारक हो
1: आपको भी मेरा मुबारक हो। क्या अब भी शरारतें करना पसंद है, क्या अब भी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो,
0: वाह,
1: क्या अब भी लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: क्या अब भी तुम रेड रोज मोतियों की खुशबू दीवानों की तरह प्यार करते हो,
0: वाह वाह,
1: कुछ पल तो मेरी खामोशी से कटे कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था,
0: ओहो,
1: मैं उसे कैसे बताता कि जब किसी शहर या बस्ती पर कोई बड़ा तूफान सैलाब गुजर जाए उसके हालात कैसे होते हैं।
0: वाह,
1: मैं उसे कैसे बताता कि इस दिल की हालत बिल्कुल रिश्मा की तरह है, जहां एटम बम गिरने के बाद जिंदगी का नाम व निशान मिटा दिया गया था।
0: भाई वाह, हिरोशिमा की तरह है, वाह वाह वाह वाह,
1: जहाँ आज भी बच्चे मजदूर पैदा हो रहे हैं,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: बिल्कुल मेरी ख्वाहिशों की तरह,
0: आहा,
1: जो किसी मासूम बच्चे की तरह बहुत सा सहारा लेकर खड़े होते हैं,
0: वाह,
1: और फिर दीन से गिर पड़ते हैं,
0: आहा,
1: मगर आज भी मैं उसे कुछ ना कह सका
0: कह सका, आहा,
1: जवाब में सिर्फ इतना कहा कि अच्छा हूँ, खुश हूँ, जी रहा हूँ।
0: वाह वाह, सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा।
1: अच्छा, तो गाना प्ले कर दीजिएगा।
0: जरूर करेंगे, अल्लाह आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। आमद का बहुत शुक्रिया
1: तो
0: भाई।
1: कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बस वो इंतजार है कि कब आएंगे तो मुझसे पैसे लेकर मेरी जान छोड़ेंगे और मैं उनकी जान छोड़ूंगा।
0: ओके ओके, अल्लाह
1: सबको बहुत बड़ा सलाम,
0: बस सबको सलाम पहुँचा, अल्लाह हाफिज। और दोस्तों ये थे मोहम्मद अयूब चौहान साहब, और इन्हें मैंने मुबारकबाद दे दी, बहुत दिनों के बाद उसका फ़ोन आया है। अब चलते हैं वकार मियां आपके तोहफे की जानिब, बिला किसी ताखीर के। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपका तोहफा हाजिर है आमद का, हमेशा की तरह बेइंतहा शुक्रिया।

मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। दो नए मेहमान हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं। शहरयार साहब, आप नॉर्थ हॉल लंदन से बज़्म में तशरीफ़ लाए हैं और अपने अहले खाना के हमरा मौजूद हैं, और मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। शहरयार साहब, आपकी गज़ल मैंने नोट कर ली है। इंशाल्लाह मेरा ख़्याल यह है कि कमर्शल के वक्फ़े के बाद पेश कर पाऊँगा। तशरीफ़ लाए हैं मजीद परदेसी, सात समंदर पार खारियाँ गुजरात से, जिनकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है कि हमारी बज़्म में तशरीफ़ लाकर इसकी इज़्ज़त और तौक़ीर बढ़ाते हैं।

0: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
1: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
0: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
0: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
1: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
0: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3 49, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424.
4: मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो। हमारी ये नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारी तमाम वो सामीन और नाज़रीन जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से गज़ल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं। आप भी अगर हमारी बज़्म की रौनक बढ़ाना चाहें, इसकी इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ाना चाहें, तो हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274 3066777।

अब हर्ष विवादा हम आपको लिए चल रहे हैं, खारियां गुजरात पाकिस्तान, और पेश कर रहे हैं वो तोहफा जो पसंद किया है हमारे मोहतरम परदेसी मजीद साहब ने। आपकी ये मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है कि आप सात समंदर पार से इस कदर बाकायदगी के साथ तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत से रखे और नज़रें बद से बचाए। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे नॉर्थ हॉल्ट लंदन, जहां मौजूद हैं जनाब शहरयार साहब और उनके अहल खाना, और उनकी एक बहुत ही पसंदीदा गज़ल वो बहुत दिनों के बाद सुन रहे हैं, अक्सर सुनते रहे हैं ये गज़ल, लेकिन क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है सलमान अलवी की खूबसूरत और सहरंगेज़ आवाज़ में, हम आपकी पसंदीदा गज़ल लेकर हाजिर रहेंगे। चलते हैं खारिया गुजरात पाकिस्तान।

और आइए दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं नॉर्थ हॉल्ट लंदन, जहां मौजूद हैं जनाब शहरयार साहब अपने अहल खाना के हमरा, और सुनना चाहते हैं अपनी पसंदीदा गज़ल आवाज़ सलमान अलवी की है। आपकी आमद का शहरयार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तोहफ़ा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

और दोस्तों, इससे पहले कि हम उस गीत की जानिब बढ़ें जिसे भगत सिंह साहब ने सुनना चाहा है लीच में, आपकी मुलाकात हम अपने खूबसूरत लिसनर और कॉलर शकील साहब से कराते हैं, जो हमारे हमरा और यहाँ मौजूद हैं बनले से। अस्सलाम वालेकुम।

0: शकील भाई की तरफ जो हमारे हमराह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी बिल्कुल, कोई नहीं, आवाज आ रही, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, वैसे
0: आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही?
1: अब आई है, पहले तो नहीं आ रही।
0: अच्छा, चलिए मुबारक हो, आ गई तो।
1: जी
0: मैंने उसी तरह से बिल्कुल लिया है और बिल्कुल आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है।
1: आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है, अभी तो आ रही है लेकिन बहुत कम, समझ नहीं आते।
0: अब आ रही है आवाज़?
1: अब ठीक है?
0: चलिए ठीक है, अब यहीं रखेंगे हम। चलिए,
1: तो
0: खुश
1: मेरी
0: आमदीद
1: आवाज आ रही
0: शकील
1: है
0: भाई,
1: आपको?
0: खुश आमदीद।
1: आपको आवाज आ रही है मेरे?
0: जी बिल्कुल क्लियर आ रही है।
1: चल ठीक है, तो तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: तो मैं गजल सुनाता हूँ, देखो ये इशरत कादरी गजल है। कहते हैं ताबे नजारा भी दोस्त था,
0: वाह वाह, क्या मिसरा है। ताबे नजारा थे तो नजारा भी दोस्त था।
1: ताबे निगाह थी तो नजारा भी दोस्त था,
0: आहा,
1: उस चश्मे नरगसी का इशारा भी दोस्त था।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया। तो बहुत कम आ रही है आपकी आवाज, बहुत ऐसे। फिर कहते हैं टूटा तो आसमां से खलाओं में खो गया,
0: टूटा तो आसमां से खलाओं में खो गया।
1: जब तक चमक रहा था सितारा भी दोस्त था।
0: अच्छा, आप शकील भाई, आप मेरी आवाज़ सही हो गई?
1: जी
0: अब मेरी आवाज़ सही हो गई?
1: बहुत कम आती है लेकिन पता था क्या बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कम आती है।
0: जी जी अता कीजिए।
1: टूटा तो आसमां से खलाओं में खो गया, जब तक चमक रहा था सितारा भी दोस्त था।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: अटकेलियां थी रेत पे
0: आहा,
1: मौजों की दूर तक,
0: अटखेलियां थी रेत पे मौजों की दूर तक,
1: ठहरी हुई नदी का किनारा भी दोस्त था।
0: वाह वाह वाह, ठहरी हुई नदी का किनारा भी दोस्त।
1: गमखारियां थी शेवा ए दिले दर्द मंद का,
0: आहा,
1: गमखारियां थी शेवा दिले दर्द मंद का, लाख अजन भी हो इश्क मारा भी दोस्त था।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: रातें ख्वाबो ख्याल से आरास्ता रहीं,
0: रातें ख्वाबो ख्याल से आरास्ता रहीं,
1: पहलू में एक अंजुमन आरा भी दोस्त था।

0: सुकून दिल के लिए
1: तरस रहा है जमाना, सुकून दिल के लिए
0: सुकून दिल ना मुयस्सर हुआ तो क्या
1: क्या होगा। वाह वाह वाह वाह,
0: क्या शुक्रिया। गुजर रही है निगाहें हद्द तजस्सुस से।
1: गुजर

और दोस्तों समा खराशी के लिए माजत खाएँ, कुछ ऐसा सिलसिला हो गया है कि ये काम ज़रा ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी फ़िलवक्त हम आपके हमराह मौजूद हैं। और रियाज साहब आपसे माजत खा हूँ, समा खराशी के लिए आपका तोहफ़ा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए। आमद का बे इंतहा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत से रखे और नज़रें बद से बचाए। आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार और दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं।

दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं हेलीफैक्स, जहाँ से रिफाकत साहब हमारे हमराह मौजूद हैं और सुनना चाहते हैं ये गीत, और कहते हैं कि हम आपका पूरा प्रोग्राम सुनते हैं, कभी कभी आपसे मुलाकात भी हो जाती है हवा के जोश पर, और आज भी हम और हमारे अहल खाना आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को रिफाकत साहब हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, कबूल फरमाइए। यही है ना जो आप और आपके अहल खाना सुनना चाहते हैं।

0: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
1: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
0: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
0: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
1: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 4557 2
2: धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 4289, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424.
6: मौसीकी के भूले बिसरे साज,
7: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास,
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। Redwood Asian Radio. Redwood Asian Radio. Medium wave 1413 kHz. Redwood Asian Radio.
3: You're listening to Bradford Asian Radio.
4: 1413 AM and online.
2: Redwood Asian Radio, medium wave 1413 kHz. Redwood Asian Radio.
3: You're listening to Bradford Asian Radio.
4: 1413 AM and online.
2: Redwood Asian Radio, medium wave 1413 kHz. Redwood Asian Radio.
3: You're listening to Bradford Asian Radio.
4: 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास,
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास,
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: बकी मोहब्बत पागल बना देती है, ना अपना ख्याल रहता है न दुनिया की परवाह। दिल धड़कता है तो महबूब का नाम लेकर, आंखें झपकती हैं तो सनम की सूरत बसाकर।
4: नदीम श्रवण की दिलरुबा तर्ज पर गजल की खुशबू बिखेर रहे हैं कुमार सानू।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 14:13 AM and online.
2: तूने साथी पाया अपना जग में इस जग में ऐसे ही सदा रहो मिलके

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।
3: जख्मों की गर कोई नुमाइश होगी, अपना दिल पेश करूं ये मेरी ख्वाहिश होगी।
4: इस कदर प्यार करने वाले ये दिल अगर जुदा हो और मिलन की कोई उम्मीद नजर न आए तो बखौल साहिर वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।
3: मगर ये खूबसूरत मोड़ कहीं ऐसे दर्दनाक अंजाम को न पहुँचे।
4: शेख आदम आबू वाला की गजल को दिल की गहराइयों में उतार रहे हैं मोहम्मद अजीज।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: इस तरफ प्यार की आग इस कदर तेज हो तो उस तरफ आंच पहुंचना लाजमी है।
4: इश्क जितना तपता है उतना ही चमकता है।
3: हकीकतों की दुनिया पर जमाने का इख्तियार सही, मगर ख्वाबों की जन्नत पर दुनिया की हुकूमत नहीं। इसी एहसास का बयान कर रही है सदाए नाज़नीन साधना सरगम।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

है क्रिकेट आउट। ये है क्रिकेट आउट। ये है क्रिकेट आउट। ये है क्रिकेट।

0: इन आउट है कोई नॉट आउट है कोई टीम से ही बाहर बेचारा।
1: ये बॉल घूमती हवा चूमती हुआ LBW बेसहारा।
0: ये है क्रिकेट
1: सिक्सर,
0: ये है क्रिकेट
1: बाउंड्री, ये है क्रिकेट
0: LBW,
1: ये है क्रिकेट
0: सेंचुरी।

0: इनकी अजब चालबाजियां, बेहतरीन कैच, जितना है मैच,
1: फील्डर की देखो कलाबाजियां,
0: मैदान है हरा,
1: भीड़ से भरा,
0: खेलने चलती है ग्यारह,
1: ये है क्रिकेट।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: ताज्जुब है

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास,
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।